0: या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कै पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी
1: Yarından sonra onu da kutsaman gerekecek.

0: तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से ना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित करे देख।
1: हाँ दिखी

0: चलू ना चलू ना क्यों फुदक फुदक की धड़कनों की चल रही की लहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक की धड़कनों की चल रही की लहरियाँ।
1: अक्षम दुशर चिकलम।
0: मैं जानू ना जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर फिरा है या मेरा मूड मस्खरा।
1: बिताने